0: रेडियो हो।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

थी बुढ़ा बुढ़ी बीते अंतिम सांस में पानी खोने हाथ और रुपनी थी नन दाह संस्कार करना लाश उठाने कांध और रुपनी बीती है नन गांव में बुढ़ा बुढ़ी बच्चा बच्ची स्वास्नी मंचे बाए कोई छाई ना मंचे भाई रुपनी रित्तो भाई को सगाऊं कोई उन्नत तो कोई उन्नत